0: Jelly malam ni ya. Barang siap menonton saya dengan di Titi Jelly 25 Kirain Tapping 22 Mata Matematikan saya. Selamat malam Mazura dan Lambo Kanan hadir ya. Okey, kalau Sabtu malam Ahad aja ramai tengah-tengah hini his ya. Terima kasih Rizwan. Terima kasih dari Klemang Putra ya. Okey, pastinya ramai yang merindukan lagu ini dari filem Bobby.
1: मुझे कुछ कहना है
0: या dari Salman Singh dan juga Lata Mangeshkar ya.
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है.
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम.
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए.
1: अच्छा मैं कहती हूँ